सरयू नदी के तट पर बसी सुंदर अवधपुरी रामलला की जन्मभूमि। दशरथ नंदन राम जी ने इसी नगरी में अपनी मानव सुलभ बाल लीलाएं की। श्री राम दशानन पर विजय प्राप्त कर जब अयोध्या नगरी पुनः पधारे तो ये जानकर अयोध्या वासियों के आनंद की सीमा न रही कि तारनहार श्री राम अब सदा के लिए यही निवास करेंगे। भक्त जनों और संत जनों की प्रार्थनाओं से रामलला के सर से हार

अभी आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का आराधना चैनल। आइए अब सुनते हैं श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चैतन्य नंदन भगवान की श्रेष्ठ मित्र नंदन भगवान की चारों भैया की हनुमान जी महाराज की श्री राम जन्मभूमि की श्री कृष्ण जन्मभूमि की श्री काशी विश्वनाथ भगवान की श्री अयोध्या धाम की श्री सरयू महारानी की जगद्गुरु स्वामी श्री रामानंदाचार्य जी महाराज की गो स्वामी श्री तुलसीदास जी

0: महाराज की
1: जय।
2: श्री हनुमान जी महाराज की
1: जय।
2: जय श्री राम।
1: जय जय श्री राम।
2: जय जय श्री राम।
1: जय जय।

0: मन की शांति और शक्ति के लिए जुड़िए भक्ति से। आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, महाकुंभ मेला हो या जगन्नाथ रथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए सूफी संगीत और शबद कीर्तन,
1: कोई बोले राम राम।
0: आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल, न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर भी उपलब्ध आराधना।

श्री गोविंद गीता अध्याय 12 भक्ति योग। कुंती पुत्र स्वाभाविक प्रश्न करता है कि हे प्रभु, आपकी सतत सेवा करने वाले व अव्यक्त स्वरूप के उपासकों में कौन अधिक योगविद है। श्री भगवान इस जिज्ञासा का समाधान करते हुए कहते हैं कि युक्ततम व्यक्ति वो है जो दिव्य श्रद्धा से मेरी उपासना करते हैं। हालांकि सर्व जीव कल्याणरत मेरे अप्रकट स्वरूप के उपासक भी अंततः मुझे प्राप्त होते हैं, परंतु यह पथ अत्यधिक क्लेशयुक्त है।

क्या दृश्य है, कन्हैया और मैया दोनों एक दूसरे के गले से लगे आंसू बहा रहे हैं। दोनों जानते हैं माखन खाया है और दोनों कह रहे हैं माखन नहीं खाया। कन्हैया ने देखा अब तो माँ मान गई है, अब झूठ बोलने से क्या फायदा। शब्दों का चमत्कार देखिए, कन्हैया ने अपने इन्हीं शब्दों में स्वीकार भी किया। अचानक कन्हैया ने माँ के आंसू पोंछे और देखिए मुस्कुराते हुए क्या कहने लगे।

0: जाम दीप जल हल पुर देवता देवन केरे दरा बार हो माय माई देवन केरे दरा बार हो मार जाम दीप जल हल खंड माता देवन के हो दरा बार हो माय कुन देवता के रचय बिहद्रा कौन बिहाय लय जाय हो माय माई नर बदिया के रचय बिहद्रा सोने बिहाय लय जाय हो माय माई सोने बिहाय लय जाय हो।
1: बहुत पुरानी बात है, अमरकंटक में सोन और नर्मदा का ब्याह तय हुआ था। बारात चल पड़ी थी, नर्मदा ने अपनी नाइन जोहिला को सजा धजा कर भेजा कि जरा देखो तो बारात की शोभा कैसी है। जब कुछ देर हो गई और जोहिला लौटी नहीं तो नर्मदा जी खुद निकल

0: पड़ी खोज खबर लेने। देखती क्या है कि सोन और जोहिला आपस में हंस बोल रहे हैं। बस फिर क्या था, गुस्से में तमतमाती नर्मदा ने मुंह फेरा और चल पड़ी पश्चिम की ओर। फिर तो वो कुमारी ही रह गई। उधर सोन पछताते चल पड़े पूरब दिशा में। जोहिला भी फिर सोन के साथ होली।
1: इतना लसुन के माइनर बदिया पाँव पै जनिया जो दे हो माय पाँव पै जनिया ला दे हो माय।
2: कैसी अनूठी कल्पना सजाई है इस लोकगीतकार के मन ने। बात कुछ ऐसी ही है कि शहडोल जिले के एक ही स्थान अमरकंटक से निकली है नर्मदा भी, सोन भी और जोहिला भी, पर ये बहती हैं अलग अलग दिशाओं में।
0: इसी भौगोलिक तथ्य से रचा गया है ये लोक मिथक, जो मध्य प्रदेश में बघेल खंड अंचल में थोड़ा बहुत बदलकर बार बार मिलता है। ऐसी टीस है इस कथा में कि एकदम तरुण हिंदी कवि एकांत श्रीवास्तव की कविता अमरकंटक में भी इसकी गूंज सुनाई पड़ती है।
3: जब फैल जाती है रात की चादर, नींद के धुएं में डूब जाते हैं पेड़ फूल और पहाड़, इसकी गहरी घाटियों में गूंजती है सोन की पुकार, नर्मदा ओ नर्मदा ओ नर्मदा ओ, और पहाड़ों के सीने में ढुलकते हैं नर्मदा के आंसू।
2: विंध्य पर्वत श्रेणी में मेकल पर्वत पर बसा अमरकंटक पहले आम्रकूट कहलाता था। इसकी प्राकृतिक सुषमा का अभिभूत वर्णन महाकवि कालिदास की मेघदूत में भी मिलता है। अमरकंटक शताब्दियों से आस्था और उपासना का पुनीत स्थान रहा है।
0: अमरकंटक के पूर्वी छोर पर है सोनमुड़ा। यहाँ एक छोटे से कुंड से रिश्ते जल के धीमे संकोची और क्षीण प्रवाह को देखकर कौन कल्पना कर सकता है कि यही सोनभद्र है।
2: हमारे पौराणिक भूगोल में तीन को महानद माना गया है, शेष नदियां हैं। इनमें सिंधु और ब्रह्मपुत्र हिमालय से निकलते हैं। विंध्याचल से निकलकर भारत के हृदय स्थल यानी हिंदी भाषी प्रदेश में अपने उद्दाम वेग से पराक्रम दिखाने वाला अकेला महानद है सोनभद्र यानी सोन।
3: नमस्ते ब्रह्मपुत्राय सोनभद्राय ते नमः, मेकलोद्भवाय बृहते सर्व पाप हराय च।
0: ये है आग्नेय पुराण वर्णित सोन महात्म्य का शुभारंभ। सोनभद्र को ब्रह्मा का पुत्र भी माना गया है और इसके क्षेत्र को निश्चय पुण्य देने वाला और मंगलकारक कहा गया है।
2: किंतु इस महाप्रतापी सोन को अमरकंटक में शिशु रूप में एक एक डग भरता देखना अनूठा ही अनुभव है। सोनमुड़ा से कुछ ही आगे बढ़कर मेकल पर्वत की खड़ी ढलान पर सोन जैसे उछाल सी भरता है और फिर
4: नीचे लुप्त हो जाता है।
2: इस स्थल पर वर्षों निवास किया है स्वामी गोपाल दास जी ने। उनकी स्मृतियां पुरानी और लगाव गहरा है।
5: वन्य पशुओं का तो वहाँ अगणित सीमा में रहा करते थे। 4 बजे संध्या के समय से तो यहाँ आवागमन ही बंद हो जाता था। उन्हीं की ही चारों तरफ शोर मची रहती थी। इस अमरकंटक क्षेत्र में विश्व विख्यात तपोवन होते हुए भी यहाँ प्रसिद्ध जड़ी बूटियों का भी काफ़ी मात्रा में, जैसे कि ब्रह्मी है और कामराज, तेजराज, भोजराज, बलराज, इस प्रकार जैसे कि शंखपुष्पी है और रुद्रवंती है, गुलबकावली नाम का एक पुष्प है और संजीवनी बूटी भी पाई जाती थी।
0: सोनमुड़ा से कुछ आधुनिक ढंग का रिश्ता है यहाँ के विकास कार्य से जुड़े श्री अंबिका प्रसाद तिवारी का।
6: प्राकृतिक दृश्य के बारे में तो जो कश्मीर के बारे में लोग कहते हैं कि कश्मीर है, तो ये कश्मीर है ही। यहाँ मानसून दिन प्रतिदिन बदल जाता है, कभी बदल, कभी बूंदाबांदी, कभी तेज हवा, कभी पानी और कभी हल्की फुल्की गर्मी। भविष्य के लिए तो मेरे ख्याल से ज़्यादा यहाँ विकास करना उचित नहीं है, यहाँ की नेचुरलिटी जो है वो समाप्त हो जाएगी।

0: सोनमुड़ा के नीचे घाटी में लोप के बाद भूमि पर सोन के दोबारा दर्शन होते हैं। पड़ोस के बिलासपुर जिले में पेंड्रा से कुछ दूर सोन बचरवार नाम के गांव में यहाँ एक पक्का कुंड है जो सोन कुंड ही कहलाता है।
1: इस कुंड का जल एक पतली नाली द्वारा बारहों महीने निकलकर खेतों में ही धीरे धीरे आगे बढ़ता दिख पड़ता है। बस शुरू हो जाती है सोन की प्रकट यात्रा, पहले उत्तर, फिर उत्तर पश्चिम और अंततः पूर्वोत्तर दिशा की ओर।
0: ये यात्रा शांति पाती है बिहार की राजधानी पटना से पश्चिम की ओर भोजपुर जिले में मनेर के पास हरदी छपरा के सामने, जहां सोन का संगम गंगा से होता है।

0: उद्गम से संगम तक सोन चलता है 784 किलोमीटर, 500 किलोमीटर मध्य प्रदेश में, 82 किलोमीटर उत्तर प्रदेश में और 202 किलोमीटर बिहार में।
1: यह भारतीय उपमहाद्वीप का 14वां लंबा जल प्रवाह है। इसका कुल जल ग्रहण क्षेत्र है लगभग 71,000 वर्ग किलोमीटर।
0: इस बीच बारी बारी से आकर इसमें मिलते जाते हैं छोटे बड़े नाले और सहायक नदियाँ। सोन की कुछ प्रमुख शक्ति धाराएँ हैं केवई, तिपान, कुनुक, जोहिला, कैमूरी महानदी, बनास, गोपद, रेड या रिहंद, घाघर, कनहर, पंडा और उत्तर कोइल।
1: समूचे सोन क्षेत्र की भूमि के तीन मुख्य प्रकार हैं, प्राचीन पहाड़ी प्रदेश, पठारी भूभाग और नदियों के रचे हुए मैदान। पहाड़ों में कैमूर कहंजुआ, सतपुड़ा मैकल और भीतरीगढ़ मैकल विशेष उल्लेखनीय हैं।
0: सोन का काफ़ी क्षेत्र अब भी बहुत दुर्गम घने जंगलों तथा वन्य प्राणियों से भरा पड़ा है, जहाँ निवास करती हैं अनेक जनजातियाँ।
1: उत्तर प्रदेश के सोनभद्र ज़िले की जनजातीय जीवन शैली और संस्कृति का विभोर वर्णन करते हुए साहित्यकार और सामाजिक कार्यकर्ता श्री नरेंद्र नीरव।
2: रेणुका सोन के संगम पर अगोरी नाम का स्थान है, जिसे हम इतिहास के विभिन्न चरणों का साक्षी मान सकते हैं। और यहाँ पर सोन सिर्फ विंध्य की एक अप्रतिम नदी ही नहीं, बल्कि इतिहास की साक्षी के रूप में हमारे सामने आती है, जहाँ हम एक तरफ कई करोड़ साल पुराने जीवाश्म सलखम नामक स्थान पर देखते हैं, जहाँ पर अपने आँखों से देख सकते हैं पथराए हुए पेड़ उस काल के, जब यहाँ कभी समुद्र बहता था। उसके बाद हम सोन के ही तट पर देख सकते हैं भारशिव नाग काल के, बुद्ध काल के पहले के भी शैव सभ्यता के अवशेष शिवद्वार में, गौरी शंकर बरेला में, और उसके बाद गुप्त काल के, मध्य काल के चंदेल और गहरवार काल के ऐतिहासिक अवशेष कुंडवासिनी तीर्थ, बंसरा देवी, गौरी शंकर, बरेला, गोठानी तीर्थ, अमिला और आगे जा कर के विभिन्न स्थानों पर राजा नल, कंडाकोट, सब सोन के तटों पर बसे हुए ऐतिहासिक स्थल हैं। सोन सिर्फ एक हरी सुनहरी नदी ही नहीं है, इसके तट पर वन्य सभ्यता, वनवासियों की गृहस्थियाँ बसी आदिकाल से अब तक, बल्कि सोन एक पूरी की पूरी संस्कृति है, जो यह बतलाती है कि मध्य भारत में, मतलब गर्म पहाड़ों में, किस प्रकार के लोग किस तरह के जीवन जीते रहे हैं।
0: जनजातीय बोलियों में मुंडारी, खरवारी, बिरहोड़ी, कोरवा, आसुरी, कुड़ुक और गोंडी प्रमुख हैं। आर्य भाषा परिवार की बोलियां हैं छत्तीसगढ़ी, बघेली, भोजपुरी और मगही।
1: सोन के मार्ग में पड़ने वाली मध्य प्रदेश

0: सीधी निवासी श्री बद्रीनाथ श्रीवास्तव इस अंचल में खूब घूमे हैं और एक अनुभव सिद्ध विचार उनके पास है।
1: आज़ादी के बाद से लोगों का दृष्टिकोण बदला है और अब उसको वो एक जीवन धारा के रूप में देखना चाहते हैं कि उससे सिंचाई के लिए पानी मिले, वहाँ पर वन प्राणी वगैरह जो है स्थल ऐसे बने, पर्यटन के लिए कोई स्थानों का चुनाव हो सके।
2: सीधे जिले में ही प्रसिद्ध बगदरा अभयारण्य के पास स्थित है सोन घड़ियाल अभयारण्य। सीधे के जिला वन अधिकारी डॉक्टर जे के उपाध्याय के शब्दों में,
3: सोन नदी में प्राकृतिक रूप से घड़ियाल और मगर पाए जाते थे। उनके आबादी को बढ़ाने के लिए सोन घड़ियाल अभयारण्य का गठन किया गया। ये 1982 से प्रारंभ की गई है। इसमें मुख्यतया दो जगह पर घड़ियाल काफ़ी मात्रा में पाए जाते हैं, भंवरसेन जहाँ की नदी गहरी है और दूसरा हमारा एक स्थल जोगदाहा है जहाँ पर के घड़ियाल काफ़ी मात्रा में मिल सकते हैं। वर्तमान में लगभग इनकी संख्या 124 है। इसे लगा हुआ क्षेत्र हमारा बगदरा अभयारण्य का है जो कि काले हिरणों के लिए बहुत प्रसिद्ध है।
0: प्रेम, एकनिष्ठ समर्पण और शूरवीरता से ओतप्रोत लोरिक गाथा का जन्म भी सोनांचल में ही हुआ था, जहाँ से ये लगभग समूचे हिंदी प्रदेश में रूप बदल बदल कर पहुँच गई।

0: लार कहें कि आज इतना नौकाए नदी सोन भद्र पर बा कुल वो पार खुटियावल बा कैसे बरतिया उतर चली गोसाइया।
1: सोनभद्र जिले के मुख्यालय रॉबर्ट्सगंज के निवासी और लोक संस्कृति मर्मक के डॉक्टर अर्जुन दास केसरी बताते हैं,
2: आपके मध्य प्रदेश बिहार और उत्तर प्रदेश की त्रिकोणीय संस्कृति का एक प्रकार से संगम हुआ है। यहाँ की जनजातियों का मुख्य नृत्य कर्मा है और कर्मा के साथ साथ कोलों का कोलदहकी है। अगरिया जात यहाँ की बड़ी मशहूर जात जनजाति है, उनका अगरही है, मुसहरों का मुसरही है। इसी तरह से और भी जितनी जनजातियाँ हैं, उन जनजातियों के अलग अलग नृत्य यहाँ लोकप्रिय हैं। इनसे ये जाहिर होता है कि आदिवासियों का संपूर्ण जीवन, यहाँ की संपूर्ण सोन घाटी की संस्कृति एक प्रकार से संगीत और नृत्य से जुड़ी हुई है। यहाँ कई गाथाएं लोकप्रिय हुई हैं,

0: कोयला, अभ्रक, चूना पत्थर, कच्चा लोहा, बॉक्साइट, चीनी मिट्टी और पायराइट जैसे बहुउपयोगी खनिजों से यह क्षेत्र समृद्ध है।
1: कोयले की बहुतायत के कारण सीधी जिले की बैढ़न तहसील और सोनभद्र ज़िले में तो जैसे देश की ऊर्जा राजधानी ही स्थापित हो गई है। एनटीपीसी की विंध्याचल वृहद ताप परियोजना के सहायक जनसंपर्क अधिकारी श्री मंजुल तिवारी के शब्दों में,
2: भारत सरकार ने और पहली पंचवर्षीय योजना के दौरान ये सोचा कि क्यों ना हम पावर स्टेशन वहाँ बनाए जहाँ पर कोयले की इस तरह की अधिक से अधिक मात्रा में उपलब्धि है। तो इस तरह से सोन घाटी के विस्तृत क्षेत्र में धीरे धीरे विकास की गतिविधियाँ शुरू हुई। कोयलों की खदानें NCL के सौजन्य से धीरे धीरे बढ़ती गईं और आज 11 खदानें यहाँ मौजूद हैं। इसके अलावा NTPC ने 3 परियोजनाएं यहाँ पे लगाईं, विंध्याचल परियोजना, सिंगरौली परियोजना एवं रिहन परियोजना। और कुल मिलाकर इसकी जो

0: अपना मार्ग बदलता रहा है। और वर्षा ऋतु में इसकी प्रलयंकारी बाढ़ की स्मृतियाँ पुराने लोगों के हृदय को अब भी कंपा जाती हैं।
1: भोजपुर जिले के पथौर गांव के मूल निवासी देव कुमार मिश्र ने वर्षों सोन तट और समूचे सोन क्षेत्र में बीहड़ यात्राएं कर सोन पर एक अप्रतिम पुस्तक ही रच डाली है। कुछ स्मृतियां उनके शब्दों में।
2: वराज बनने के पहले तो सोन बहुत प्रलय मचाता था और पानी आता था ऐसे जैसे बिल्कुल दीवार आ रही हो। रोहतास जिले में एक मुहावरा ही है, हिरणवाह, बैल को हमारे बैल को हरणवाह हो गया है। कुछ उसका अर्थ इसके सिवा और कुछ नहीं है कि बीमारी से आक्रांत पशु उछल कूद करने लगता है, हर काम में अड़ंगा डालने लगता है। हिरण्यवाह नाम है, सोन का ही दूसरा नाम है। हिरण्यवाह बीमारी जो है वो सोन की प्रकृति को उजागर करता है कि जब बाढ़ आती है तो किस तरह सोन का व्यवहार बिल्कुल अनियंत्रित हो जाता है।
0: ये सहज ही है कि आधुनिक युग में विज्ञान के विकास से उपजी शक्ति का प्रयोग इस प्रचंड जलराशि से मैत्री कराने के लिए किया जाता। बिहार के रोहतास जिले में डेहरियान सोन के निकट इंद्रपुरी में है सोन बराज सिंचाई योजना। लगभग 125 वर्ष पुरानी इस योजना की नहर प्रणाली की चर्चा करते हुए डेहरी में पदस्थ जल संसाधन विभाग के मुख्य अभियंता मोहम्मद अलाउद्दीन मंसूरी।
3: इस सोन नदी से बिहार क्षेत्र में लगभग 125 साल पहले से सिंचाई की व्यवस्था है, जबकि अंग्रेज़ों ने डेहरी के निकट एक आईनीकट बनाया था और उससे ये पानी लेके नहरों के मार्फत ले जाते थे। इसके बाद जब वो आईनीकट बहुत पुराना हो गया तो फिर बिहार सरकार ने एक बराज बनाया वहाँ पुराने आईनीकट के लगभग 8 किलोमीटर ऊपर, और वहाँ से फिर ये पुरानी नहरों को जोड़ दिया गया और एक उच्च स्तरीय नहर भी निकाले गए दोनों तरफ ये बराज के। और इससे अब जो है जो ज़िले बन गए हैं भोजपुर, रोहतास और इधर औरंगाबाद और इधर पटना, इन ज़िलों में इससे 5.5 लाख हेक्टेयर भूमि में सिंचाई हम लोग कर रहे हैं।
1: सोन नहर की सिंचाई प्रणाली में उपलब्ध जल के अधिकतम उपयोग, भूगर्भ जल विकास, उत्पादन और बाजार प्रबंध सुनिश्चित करने के उद्देश्य से बिहार में सोन कमान क्षेत्र विकास एजेंसी के नाम से एक स्वशासी निकाय गठित किया गया।
0: इसका कार्यक्षेत्र पटना, भोजपुर, बक्सर, रोहतास, औरंगाबाद, गया, भभुआ, जहानाबाद और पलामू जिलों में है। इस एजेंसी ने सोन बीज नाम से धान के उन्नत बीज का रिकॉर्ड उत्पादन किया है। वृक्षारोपण, जल संरक्षण और मिट्टी की जांच जैसे महत्वपूर्ण कार्य भी इसने बड़े पैमाने पर हाथ में लिए हैं।
1: इसी नहर प्रणाली के कारण सोन जैसे बिहार की जीवनदायिनी नदी बन गई है। रोहतास जिले के ग्राम पहलेजा के कृषक श्री उदल सिंह कहते हैं,
4: जब से इंद्रपुरी का बांध बंधा है तब से देहरी ओनसों से उत्तर और पश्चिम पूर्व वाले लोगों को खेती में अच्छा खासा फायदा हुआ है। धान होता है और गेहूँ होता है, नहर आने से फसल ज़्यादा होने लगा है।
0: सोन की लहरों से ही एक अन्य रूप में जीवन यापन करते हैं मछुआरे।
5: हमारा नाम सुरेश चौधरी है, रहते हैं इंद्रपुरी में। मछली है थोड़ा बहुत, चलवा पोठिया मिलता है सोन में, रीठा बामी मिलता है यहाँ पर, चलवा बहुत थोड़ा बहुत कम मिलता है। एकरे में बाल बच्चा हमारा जीता है खाता है, कभी ज़्यादा मिलता है कभी कम मिलता है, बस इसी में हम लोग का है कि इसी में जीना है मरना है हम लोग का।
0: हाल ही में डेहरी आन सोन में सोन नहर पर जल विद्युत परियोजना भी शुरू हो गई है। परियोजना के अधीक्षण अभियंता विद्युत श्री ब्रज किशोर द्विवेदी।
6: यहाँ सोन वेस्टर्न लिंक कैनाल है जो सोन नदी पर है, उसी पर हम लोगों का यह सोन वेस्टर्न हाइड्रोलिटिक प्रोजेक्ट बना है। इसमें 4 इकाइयाँ हैं, प्रत्येक इकाई की क्षमता 1.65 मेगावाट है। यहाँ 3 इकाइयाँ रेदर कमीशन हो चुकी हैं, 4थी इकाई भी करीब करीब तैयार है। सो करीब करीब हमारे चारों यूनिट रेडी हैं। 12 महीना हम लोग इससे जब भी कनाल में पानी रहेगा तो हम लोग उसमें बिजली पैदा कर सकते हैं और एक इकाई से प्रतिदिन करीब 40,000 यूनिट हम लोग जनरेट करेंगे।
1: विकास के स्वप्न को सींचने वाली सोन की बहुत ही महत्वपूर्ण निर्माणाधीन परियोजना है बाणसागर बहुउद्देशीय अंतर्राज्यीय परियोजना।
0: मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार तीनों राज्यों के लिए आगत समृद्धि के स्वप्न समेटे इस परियोजना के तकनीकी पक्ष के बारे में बता रहे हैं

0: परियोजना के रीवा स्थित मुख्य अभियंता श्री के अंबाजी राव।
1: इस प्रोजेक्ट में एक है कि ये 63 मीटर हाई डैम है, मुख्य बात, और इसकी लंबाई 1020 मीटर है और इसकी जो कैपेसिटी है इट इज 5.1 मिलियन एकड़ फीट, वो काफी बड़ा है। मध्य प्रदेश में जो चल रहा है वो सबसे बड़ा कैपेसिटी का प्रोजेक्ट है। 56,000 हेक्टेयर मतलब 560 वर्ग किलोमीटर के एरिया में उसका पूरा पानी फैल जाएगा। ये जो हमारे जो 2 मिलियन एकड़ फीट पानी हम यूज़ कर रहे हैं मध्य प्रदेश का, उसमें 1.48 मिलियन एकड़ फीट हम सिंचाई के लिए यूज़ कर रहे हैं और 0.52 मिलियन एकड़ फीट हम MPP को दे रहे हैं जिससे वो हाइड्रो पावर जनरेट किया कर सकते हैं। 435 मेगावाट की क्षमता के हमारे कुल ये 4 पावर हाउसेस में इसका होने का है।
0: लेकिन बड़ी विकास योजनाएं अपनी भरपूर कीमत भी वसूलती हैं, आशाओं के साथ आशंकाएं भी उपजती हैं। बाणसागर परियोजना की संभावित डूब क्षेत्रों में आने वाले सतना जिले के ग्राम झिन्ना के श्री भैयालाल वैश्य का मन इन्हीं में डूब उतर रहा है।
2: हम ये सोच रहे हैं कि हमको कम मुआवजा मिलेगा और हम कहाँ जाएंगे। आज 30 वर्ष हमारी उम्र है, हमारी प्रगत करने वाली उम्र अभी है और हम आगे कहाँ जाकर क्या प्रगत कर लेंगे, अपने हम बाल बच्चे के लिए भविष्य में क्या उन्नत कर पाएंगे।
3: ऐसी ही उथल पुथल बिहार के गढ़वा पलामू जिले के ग्राम बिजड़ी के श्री रघुनाथ दुसाद के मन में भी है, जिनका गांव सोनपुर निर्माणाधीन कदवन जलाशय परियोजना की डूब में आने वाला है।
4: हम लोग को तो लगता है कोई सा गांव अब तो नहीं मिलेगा, हम लोग को तो अफसोस हो ही रहा है। हम लोग को सोन नदी से तो बहुत फायदा है क्योंकि सोन की ढाब से हम लोग पैदे जितना कमा रहे हैं जमीन से वो भी फायदा है।
0: ऐसे में शायद समाधान एक ही है, मानवीय नियति के प्रति संवेदनशील प्रशासकीय नीतियां और उन पर ईमानदार अमल। बाणसागर परियोजना के रीवा में पदस्थ भू अर्जन और पुनर्वास आयुक्त श्री प्रकाश चंद्र के स्वर में गुत्थियों को सुलझाने का विश्वास और धीरज है।
5: जो परिवार अपने सामाजिक परिवेश से विस्थापित होंगे उन्हें बसाने के लिए नए आदर्श ग्रामों की बसाहट का काम पूरा किया जाएगा। आदर्श ग्रामों से तात्पर्य यह है कि वहाँ हम किसी भी नागरिक सुविधाओं की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं जैसे बिजली, सड़कें, पानी, पेयजल और अन्य शिक्षा से संबंधित बातें, इनको हम वहाँ तुरंत निर्मित करेंगे, इनकी पूर्ण व्यवस्था करेंगे। दूसरी बात, शासन ने इन आदर्श ग्रामों में ये रखी है कि प्रत्येक ग्राम में एक विकसित भूखंड जो 50x90 वर्ग फीट का होगा यह प्रत्येक विस्थापित को दिया जाएगा, जो निःशुल्क दिया जाएगा।
3: औद्योगिक जल प्रदूषण हमारे दौर की एक भीषण समस्या है, सोन भी इससे अछूता नहीं।
0: शहडोल के शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में प्राणी शास्त्र के व्याख्याता डॉक्टर विनय सिंह कहते हैं,
6: मुख्य रूप से जो प्रदूषण के प्रभाव पानी में आते हैं उस प्रभाव के फलस्वरूप पानी का pH एसिडिक हो जाता है, पानी टर्बिड हो जाता है और पानी का ऑक्सीजन कंटेंट जो है वो काफ़ी कम हो जाता है।
3: सोनभद्र ज़िले में ओबरा में रह रहे पत्रकार और पर्यावरण चैतन्य संस्था के महासचिव श्री राहुल श्रीवास्तव,
7: हर महीने करीब 50,000 टन राख जो है सोन नदी में चली जाती है। उस राख के बहने से सोन जो है चौपन से पटना तक एकदम प्रदूषित हो गई है।
0: प्रदूषण की समस्या को आधुनिक उपभोगवादी जीवन दृष्टि का दोष मानते हैं रीवा के अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय के कुलपति और पर्यावरण जीव शास्त्री प्रोफेसर JS राठौर।
8: ये जो अम्लाई क्षेत्र है जो मिल वाले हैं वो पूरे नदी के ऊपर एक मिट्टी का बांध बना देते हैं। गर्मी के दिनों में पानी कम होता है और मिल को पानी की आवश्यकता ज़्यादा रहती है, तो इन दिनों में तो स्थिति ऐसी हो जाती है कि जैसे मान लीजिए पूरी नदी ही मिल के अंदर पहले चली गई और फिर नीचे जो है जो पानी फेंका गया वो पूरा प्रदूषित पानी ही फेंका गया। मैं तो ये मानता हूँ कि जो पर्यावरण है वो मूल रूप से जीवन शैली और जीवन दृष्टि का प्रश्न है। आधुनिकीकरण ने जो नदियों को जो हम माता और एक दिव्य रूप में देखते थे वो दृष्टि

0: के ऊपर कोहरा एक तरीके से आधुनिक दृष्टि ने किया है, और यही कारण है कि हम उनकी पवित्रता को बनाने में उतना उत्साह नहीं दिखा पाते जितना कि हमें दिखाना चाहिए।
1: शायद हमें अब पुनराविष्कार करना होगा अपनी मूल विश्व दृष्टि का, जिसमें जीवन और नदी का अद्भुत तादाद में है। नदी को जैसे जीवन के प्रवाह का ही प्रतीक माना गया है,
2: उसमें सभी कुछ तो है, निरंतरता, अखंडता, दुर्निवार संकल्पशीलता और अविराम गति। आधुनिक चेतना और उपकरणों से संबद्ध होकर इसकी दुर्दमनीय पौरुषे शक्ति से ऐसी स्थायी मैत्री हम कर पावें
1: कि इसके अंचल में जीवन के उल्लास की लय में बंधे पांव थिरकते रहे अनंत तक। जैसा अनंत इसका ओज है, जैसी अविराम इसकी यात्रा है, अपनी ऊर्जस्विता में हमारी अतीत, वर्तमान और भविष्य को स्पंदित करती हुई।

शिकारी उठाई राधा ने। गाना आगे आगे भागे राधा पीछे पीछे दौड़े, इसे लपट झपट में गोपियां भी संग होले। फिर मृदंग बजे तो फिर ढोल बजे, और झांझ बजे तो फिर रास रचे। फिर

कुछ समझ न पाई राधा, ऐसी मुरली बजाई, ऐसी लीला रचाई, खिली आंख मिचौली राधा सुदुपुद बोली, फिर मृदंग बजे तो फिर ढोल बजे और झांझ बजे तो फिर रास रचे, फिर जोर से सब बोले

0: मन की शांति और शक्ति के लिए जुड़िए भक्ति से। आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, महाकुंभ मेला हो या जगन्नाथ रथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए सूफी संगीत और शबद कीर्तन,
1: कोई बोले राम राम।
0: आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल, न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर भी उपलब्ध। आराधना।

Shiv Mahima. प्रस्तुत है शिव पुराण एवं अन्य पुराणों और उपनिषदों पर आधारित यह कार्यक्रम शिव महिमा।

0: शिव महिमा के प्रभाव से देवराज नामक ब्राह्मण के उद्धार की कथा आप सुन चुके हैं। आज सुनिए शिव पुराण के पहले सर्ग की दूसरी कथा।
1: महाभाग सूत जी, आप सर्वज्ञ हैं। देवराज ब्राह्मण की कथा सुनकर मेरा मन आनंद से भर उठा है। अतः शिव के चरणों में आस्था जगाने वाली दूसरी कथा भी सुन

0: शौनक, सुनो, समुद्र के निकट एक ग्राम था जहां दुराचारी लोगों का निवास था। वे ना तो देवताओं में विश्वास करते थे और ना भाग्य पर। वे सभी पशु बुद्धि वाले लोग थे। वहां एक समय बिंदुक नामक ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी शील स्वभाव वाली अत्यंत सुंदरी थी, किंतु बिंदुक वैश्यगामी और कुमार्ग पर चलने वाला था। उसके दुष्प्रभाव से आगे चलकर उसकी पत्नी चंचला भी दुराचारिणी हो गई, किंतु शिव पुराण की महिमा से उसका उद्धार हुआ और मोक्ष प्राप्त करके वो महादेवी पार्वती की प्रिय सखी बन गई। हे सूची, ये अत्यंत मनोरम कथा जान पड़ती है। वो चंचला नामक स्त्री देवी पार्वती की प्रिय सखी कैसे बनी?
1: शौनक, इस मनोहारी कथा को सुनने के लिए हम भगवान शंकर के निवास कैलाश पर्वत पर चलते हैं, जहां देवी उमा अपनी सखी चंचला के साथ विराजमान है। चंचला के उद्धार की कथा हम उन्हीं से सुनेंगे।

0: चंचला जी माहेश्वरी, भगवान महेश्वर के इन गणों के बीच तुम्हें अटपटा तो नहीं लगता?
1: बिल्कुल नहीं देवी, आपके चरणों में मुझे कितना आनंद आता है मैं बता नहीं सकती। मृत्यु लोक में तो मैं सुख की कल्पना तक नहीं कर सकती थी माते।
0: चंचला,
1: आज्ञा महादेवी।
0: क्या तुम अपने मृत्यु लोक के जीवन के बारे में मुझे बताना चाहोगी?
1: अवश्य माता जगदम्बी। मादे, मैं बिंदुक नामक ब्राह्मण की पत्नी थी जो बुरी संगत के कारण कुमार्ग पर चढ़ने लगे थे। उनकी मृत्यु के बाद विधवा होकर मैं अपने बंधुजनों के साथ रहने लगी। मैं सुंदरी और युवा थी।
2: चंचला, देवी चंचला।
1: कौन है?
2: मैं हूँ, जयदेव।
1: जयदेव, आप पधारिए।
2: एक विशेष काम से आया हूँ देवी।
1: जी, कहिए।
2: तुम्हें पता है, पास के गोकर्ण में एक विशाल मेला लगने वाला है। गांव के अनेक लोग जा रहे हैं वहाँ। क्या तुम मेरे साथ चलोगी?
1: जी, मैं मेले में?
2: हाँ, थोड़ा मन बहल जाएगा।
1: किंतु मैं अकेली।
2: अरे चिंता की क्या बात है, मैं जो हूँ तुम्हारे साथ। और फिर गांव के अनेक लोग भी तो हैं।
1: किंतु वहाँ रहने की व्यवस्था।

0: अब
1: उसका सब प्रबंध हो चुका है, तुम्हें कोई कष्ट नहीं होगा, बस तुम हाँ कर दो।
0: अब किंतु
1: देखो, अब किंतु परंतु कुछ नहीं, क्या तुम मेरा इतना सा अनुरोध स्वीकार नहीं करोगी? तुम्हारे मौन को स्वीकृति समझूं? ठीक है, मैं कल सवेरे तुमको लेने आऊंगा, तैयार रहना।
0: परंतु मेले में किंतु गांव के और लोग भी तो हैं, इसमें क्या बुराई है?
1: देखो चंचला, यहाँ बहुत भीड़ है, अब हाथ पकड़ लो, अन्यथा बिछुड़ जाने का डर है।
0: अच्छा ठीक है,
1: देखो कितना मनोरम तट है, कुछ देर विश्राम कर ले, फिर स्नान करके वापस लौट चलेंगे।
0: हाँ देखिए, उस घाट पर महिलाएं स्नान कर रही हैं, मैं उधर ही चली जाती हूँ।
1: ठीक है, लेकिन पानी में दूर तक ना जाना, जहाँ मगर भी हैं।
0: अच्छा ठीक है, मैं ध्यान रखती हूँ।
1: मेरी इच्छाएं संपूर्ण कर दो गंगे, बहुत बहुत शीतल जल है, आज तो स्नान में मजा आ गया। चंचला, अरे ऊपर कहाँ जा रही है? चंचला चंचला, उधर उधर मगर है, वही तुम्हारे निकट। ठहरो ठहरो, मैं आ रहा हूँ, तुम वही रहना। चंचला मुझे पकड़ो, मुझे पकड़ो, दोनों हाथों से। इधर इधर पानी का बहाव अधिक तीव्र है चंचला, डरो नहीं चंचला, मुझे कस के पकड़ लो। हाँ ऐसे ही ठीक है, बस बस अब कोई भय नहीं।
0: तुमने मुझे बचा लिया है, अन्यथा मैं तो तुम मेरी रक्षक हो, मैं तुम्हारा उपकार जीवन भर नहीं भूल सकती। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो।

0: 我，सपने में मेरी सही मैंने दुराचार किया है, मुझसे पाप हुआ है, मुझे मुझे क्षमा करो देव, मुझे क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो।
1: चंचला?
0: जयदेव, तुम?
1: हाँ, मैं। क्या हुआ?
0: जयदेव, तुम चले जाओ। मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी।
1: लेकिन क्यों?
0: मैंने कहा ना, मैं नहीं जाऊंगी, बस और कुछ नहीं।
1: तो क्या तुम यहीं रहोगी?

0: डर लगता है।
1: चंचला
0: मुझे मत छुओ, मुझसे दूर रहो। मैं विधवा हूँ, पर पुरुष का साथ भी अनुचित है।
1: संचला, मुझे अब भी पराया समझती हो?
0: हाँ, आगे मत बढ़ना वरना मैं शोर मचा दूंगी।
1: अच्छा जाता हूँ मैं,
0: लेकिन
1: ये तो बता दो मेरा अपराध क्या है?
0: अपराध तुमने नहीं, मैंने किया है जयदेव, मैंने किया है। लेकिन लेकिन मुझे प्रायश्चित करना होगा। जयदेव मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे अकेला छोड़ दो, मेरे हाल पर छोड़ दो। मुझसे मिलने का कभी कभी यत्न भी ना करना।

0: नहीं क्या किया, क्या किया। मेरे मन में ऐसी पाप धारणा क्यों जागी। अब इस पाप का प्रायश्चित कैसे करूं।
1: संकीर्तन कैसा है? हे प्रभु,

कैसा मनोरम वातावरण है, मन जैसे नहा गया हो। बोलो शिव शंकर भोले भंडारी की जय, नीलकंठ महादेव की जय जय।

0: बेटी, तुम यहाँ अकेली क्यों बैठी हो?
1: महाराज, मैं नहीं जानती कि कहाँ जाऊँ।
0: क्यों, क्या तुम्हारा कोई नहीं है?
1: कोई नहीं है स्वामी जी, अकेली हूँ, कोई आसरा नहीं। जब आप मुझे यहाँ ठहरने की अनुमति देंगे?
0: बेटी, ये शिव धाम है, यहाँ के द्वार सबके लिए खुले।

0: स्वामी जी, देवी चंचला सदगति को प्राप्त हुई।
1: शिव उपासना करते हुए प्राण त्यागे हैं, इसे अवश्य ही मोक्ष प्राप्त होगा।
2: हे महाभागे चंचला, तुमने मृत्युलोक में मेरी स्तुति करके ही ये पुण्य अर्जित किया है। तुम अनंत काल तक शिवलोक में रहने की अधिकारिणी हो, तुम्हारी और क्या इच्छा है?
3: हे शिव शंकर, आपके चरणों में बने रहने की इच्छा से बढ़कर भला और कौन सी इच्छा हो सकती है?
2: तथास्तु। महादेवी पार्वती, क्या आप चंचला की पुण्य आत्मा को अपनी सखी के रूप में स्वीकार करेंगी?
4: इससे अधिक प्रसन्नता की बात और क्या हो सकती है महादेव? आपकी ये इच्छा मेरे मन के अनुकूल है देव। सखी चंचला, तुम्हारी कथा सुनकर मैं अत्यंत प्रसन्न हुई। बोलो, तुम्हें कौन सा वर दूं?
3: माता जगदम्बे, मुझ पर आपकी कृपा का कोई अंत नहीं है। यदि आप मुझ पर अत्यंत प्रसन्न हैं, तो मेरी एक कामना और पूरी कर दीजिए।
4: कहो, निसंकोच कहो चंचला।
3: हे गिरिजा कुमारी, मेरे पति देव बिंदुक इस समय कहाँ हैं? मैं नहीं जानती, न जाने वो किस गति को प्राप्त हुए।
4: बेटी, तुम्हारा पति बिंदुक बड़ा पापी था। वो इस समय विंध्य पर्वत पर पिशाच की योनि में पड़ा हुआ है, अपने शेष पापों का फल भोग रहा है।
3: महादेवी, मैं केवल यही वर मांगती हूँ कि मेरे पति का अब उद्धार कर दीजिए।
4: तुम्रु,
0: आज्ञा मातेश्वरी।
4: तुम शीघ्र ही विंध्य पर्वत पर जाओ, वहां एक भयंकर पिशाच रहता है। उसे किसी भी प्रकार शिव पुराण की कथा सुनाओ। कथा सुनने से वो सभी पापों से मुक्त हो जाएगा।
2: जैसी आज्ञा महादेवी।
5: किसने दुस्साहस किया कि मुझे आदेश दे? मैं संसार के सभी नियमों को तोड़कर सर्वनाश की ओर ले जाने वाला महापिशाच हूँ।
6: हे पिशाच, लो शिव का पाश, होगा तुम्हारी घिनौनी वृत्ति का नाश। ये आ!

0: अरे अरे बचाओ, मरा रे। अरे अरे ये कैसा बंधन है, मुझे इससे मुक्त कर दो, मुक्त कर दो मुझे इससे।
1: तुम्हें मुक्त करने का हमें अधिकार नहीं। चलो, देव तुम्बरू तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं।

0: हाँ। हे पिशाच, क्या तू जानता है कि तेरी आत्मा इस योनि में अनेक दुख क्यों भोग रही है? क्या तू इससे मुक्ति पाना नहीं चाहता?
1: मेरी मुक्ति भला कैसे संभव है? जीवन भर अनेक कुकर्म किए, उनका फल तो मुझे भोगना ही होगा ना।
0: पिछले जन्म की तेरी पत्नी चंचला शिव जी की कृपा से माता पार्वती की परम सखी बन गई है। माता जगदम्बा के आदेश से हम तुझे शिव पुराण की कथा सुनाने आए हैं। शांत चित्त होकर सुनो।

0: हे तुम्बरु, आपके सुखमय वचनों से मेरा मन शुद्ध हो गया है। मैं भगवान शंकर के चरणों में अपना शेष समय बिताना चाहता हूँ। मुझे ऐसा विधान बताइए जिससे मुझे भगवान शंकर का सानिध्य प्राप्त हो।
1: हे बिंदु, शिव महिमा के सुनने से तुम्हारी आत्मा ना केवल पिशाच योनि से ही मुक्त हुई है, बल्कि पूर्व जन्मों के सभी पापों से तुम मुक्त हो गए हो। इसलिए अब तुम शिवलोक पहुंचने के अधिकारी हो गए हो। चलो मेरे साथ आओ।
0: मैं कृतार्थ हुआ भगवान।

0: हे माता पार्वती, आपके आदेश का पालन कर मैं बिंदुक नामक व्यक्ति की आत्मा को ले आया हूँ। बिंदुक, माता पार्वती को प्रणाम करो।
1: हे माता पार्वती, मुझे अपने सौभाग्य पर विश्वास नहीं होता। मैं माता बार बार आपको प्रणाम करता हूँ। मुझे अपने चरणों में स्थान दीजिए महादेवी, स्थान दीजिए।
2: मिलेगा, अवश्य मिलेगा। लेकिन क्या तुम जानते हो, ये तुम्हारी पूर्व जन्म की पत्नी चंचला के सत्कर्मों का ही फल है। अब तुम अनंत काल तक शिव लोक में रह सकते हो।
1: आपकी जय हो मातेश्वरी, जय हो।
0: हे सूत जी, चंचला और बिंदु की मोक्ष प्राप्ति की कथा सुनकर मैं धन्य हुआ।
3: हे शौनक मुनि, चंचला और बिंदु की यह कथा शिव पुराण की महिमा को बताने वाली है। संसार के सभी मनुष्य शिव पुराण की कथा सुनकर मोक्ष प्राप्त करने के अधिकारी हो जाते हैं। आज की कथा यहीं समाप्त होती है।
4: शिव महिमा। अभी आप शिव पुराण एवं अन्य पुराणों और उपनिषदों पर आधारित यह कार्यक्रम सुन रहे थे।

भक्त जनों, आइए आज अपने भीतर अपनी अंतरात्मा का साक्षात्कार करें और उसी से कुछ प्रश्नोत्तर करें। प्रश्न है,

0: मन की शांति और शक्ति के लिए जुड़िए भक्ति से। आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, महाकुंभ मेला हो या जगन्नाथ रथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए सूफी संगीत और शबद कीर्तन,
1: कोई बोले राम राम।
0: आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी।

राम जी की आंखें भर आती हैं और अपनी खड़ाऊ भरत जी को देते हुए अयोध्या की गद्दी संभालने के लिए वचन लेते हुए विदा करते हैं।

प्रभु श्री राम भरत जी को विदा कर पहुंचते हैं पंचवटी, जहां पर 14 वर्ष बिताने का निर्णय लेते हैं। तभी सूपनखा वन में घूमते घूमते प्रभु श्री राम को देख मुग्ध हो उठती है और राम से विवाह करने का प्रस्ताव कुछ इस प्रकार से रखती है।

प्रभु श्री राम सूपनखा का आत्मनिवेदन न मानते हुए अपने भाई लक्ष्मण को इशारा करते हैं और भाई लक्ष्मण अपने प्रभु राम जी का आदेश पाते ही तीर से सूपनखा की नाक काट लेते हैं। और उधर रावण के दरबार में राग रंग उत्साह जेहर देखा हर तरफ खाली वाहे वाह। इतने में रोवत उहां गैल सूपनखा आए, पड़ल रंग में भंग औ गैल सनाका छाए। और यह देख रावण अपनी बहन का हाल मारीच को समझा बुझाकर उसे स्वर्ण मृग के रूप में पंचवटी भेजते हैं।

लक्ष्मण का समझाए के राम बहुले पाँव, सीता लक्ष्मण रह गए पंचवटी के छाँव। सीता जी की मांग पूरी करने के लिए प्रभु श्री राम स्वर्ण मृग के पीछे चल पड़ते हैं और प्रभु राम का तीर लगने पर मारीच राम जी की आवाज़ में हाय लक्ष्मण पुकार उठते हैं। यह सुन सीता घबरा उठती हैं और गुस्से में जानकी जी लक्ष्मण को कठोर वचन कहते हुए प्रभु राम को खोजने के लिए वन की ओर भेजती हैं। उसके पश्चात साधु के वेश में रावण पंचवटी में सीता से भीख मांगने पहुंचते हैं।

लक्ष्मण रेखा पार करने पर रावण असली रूप धारण करके सीता का हरण करते हैं। अब राम लक्ष्मण पंचवटी पहुंचकर सीता को ना पाकर विलाप करते हुए घायल जटायु से मिलते हैं। गिद्धराज राम लक्ष्मण को सीता हरण की दिशा बताते हैं और सीता की खोज करते हुए दोनों भाई शबरी के आश्रम पहुंचते हैं। यह देख शबरी अत्यधिक भक्ति में लीन हो जाती हैं।

एक सच्चा हरि भक्त जीवन भर ईश्वर दर्शन की आस लिए, हरि मिलन की प्यास लिए पल पल तड़पता है, तरसता है कि उस पर भी हरि कृपा कर दे। भक्तों का तारनहार, जगत का पालनहार हर युग में अवतार लेता है, कभी अवधपति राम तो कभी गोकुल का श्याम बनकर। बाल कृष्ण की एक झलक पाने के लिए तुलसी, नानक, सूरदास, मीराबाई, एकनाथ, तुकाराम और नरसिंह मेहता ने आराधना की, तपस्या की और वो सफल हुए। हरि दर्शन का प्यासा भक्त ईश्वर से कई सवाल करता है कि उसमें क्या कमी है, उसकी भक्ति में क्या कसर है कि परमात्मा उससे इतनी दूरी बनाए रखता है।

हूँ। दूसरी कड़ी में आप धनुर्भंग तक का प्रसंग सुन चुके हैं। आज प्रस्तुत है श्री विश्व प्रकाश दीक्षित पटुक की लिखी हुई तीसरी कड़ी

0: रामचंद्र जी के रूप गुण शील और स्वभाव को देख सुनकर राजा दशरथ आनंदित हुए। सबके हृदय में यही अभिलाषा उत्पन्न हुई और सब शिवजी से यही प्रार्थना करने लगे कि राजा दशरथ अपने रहते श्री रामचंद्र को युवराज का पद दे दें। एक समय सब सहित समाजा राजसभा रघुराज विराजा। राजसभा में बैठे हुए राजा दशरथ ने स्वभावतया हाथ में दर्पण लिया, उसमें अपना मुख देखा और शीश का मुकुट सीधा किया। राजा ने देखा श्रवण समीप भये सित के सा। उन्हें लगा मानो बुढ़ापा उपदेश कर कह रहा है,
1: नृप जब राज राम कह देहु जीवन जन्म लाहु किन लेहु।
0: राजा दशरथ ने इस पर विचार कर शुभ दिन और सुंदर समय पाकर गुरु वशिष्ठ से निवेदन किया,
1: मुनि नायक भय राम सब विधि सब लायक, सेवक मंत्री नगर निवासी शत्रु मित्र उदासीन सब कोई राम को मेरी ही तरह प्रेम करते हैं। आपके ही समान परिवार सहित विप्रगण भी उन्हें स्नेह की दृष्टि से देखते हैं। आपके पवित्र चरणों की धूली की पूजा करके मैंने सब कुछ पा लिया है। अब अभिलाष एक मन मोरे पूज्य ही नाथ अनुग्रह तोरे।
2: राजन आज्ञा दीजिए, कहिए क्या अभिलाषा है।
1: नाथ राम करिए ही जुब राजू, आप कृपा कर आज्ञा दें तो तैयारी की जाए। मैं कहता हूं कि मेरे जीते जी यह आनंद उत्सव हो जाए जिसमें सब लोग अपने नेत्रों का लाभ प्राप्त करें। प्रभु प्रसाद शिव सबई निवाही, यह लालसा एक मन माही। इस लालसा के पूर्ण हो जाने पर फिर कोई चिंता नहीं, शरीर रहे या चला जाए।
2: सुनु नृप जासु विमुख पछताही, जासु भजन बिनु जरने न जाही, वही सब लोगों के स्वामी श्री राम आपके पुत्र रूप में है, इसलिए बेगी विलंब न करिए नृप साजी सबुई समाज, सुदिन सुमंगल तबही जब राम हो ही जुवराज।
0: दशरथ जी गुरु वशिष्ठ की अनुमति पाकर प्रसन्न चित्त महलों में आए। सबको एकत्र कर मंत्री सुमंत से कहा, जो पांच ही मत लागे नीका, करहु हरख ही राम ही टीका। मुनिवर की आज्ञा के अनुसार राज्याभिषेक का सब प्रबंध शीघ्र किया जाए। मुनिवर ने प्रसन्नता पूर्वक मृदुवाणी में संपूर्ण श्रेष्ठ तीर्थों का जल, आवश्यक औषध मूल फूल फल और पत्रादि अनेक मांगलिक वस्तुओं के नाम गिनवाकर बताए। चंवर मृग चर्म बहुत प्रकार के वस्त्र, असंख्य जातियों की ऊनी और रेशमी कपड़े, नाना प्रकार के रत्न तथा बहुत सी मांगलिक वस्तुएं जो जगत में राज्याभिषेक के योग्य होती हैं सबको मंगाने की आज्ञा दी। मुनिवर ने वेदों में कहा हुआ सब विधान बताकर कहा,
2: नगर में बहुत से मंडप सजाओ, फलों समेत आम सुपारी और केले के वृक्ष नगर की गलियों के चारों ओर रोप दो, सुंदर मणियों के मनोहर चौक पुरवाओ और बाजार को तुरंत सजाने के लिए कह दो, श्री गणेश जी गुरु और कुल देवता की पूजा करो और भूदेवों की सब प्रकार से सेवा करो, ध्वजा पताका तोरण कलश घोड़े रथ और हाथी सबको सजाओ।
0: मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ के वचनों को शिरोधारी करके सब लोग अपने अपने काम में लग गए। मुनिवर ने जिसको जिस काम के लिए आज्ञा दी उसने वो काम इतनी शीघ्रता से कर डाला मानो पहले से ही कर रखा था। राम के राज्याभिषेक की सब तैयारियां होने लगी, अयोध्या में बधावे बजने लगे और

0: देहि अवसर मंगल परम सुनि रहस्यु रनिवासु शोभत लख विधु बढ़त जनु बारिधि बीच बिलासु। रनिवास में भी ये मंगल समाचार पहुंचा दिया गया। सभी रानियां मंगल कलश सजाने लगी। कौशल्या ने नाना वित्तान दिया। वे प्रार्थना करने लगी, जे ही विधि हो ए राम कल्याणु देहु दया करी सो बरदानु। चारों ओर आनंदमय मंगल गान होने लगे। राम राज अभिषेक सुन हि हरखे नर नारी लगे सुमंगल सजन सब विधि अनुकूल विचार। राजा दशरथ की इच्छानुसार मुनि वशिष्ठ श्री राम को उपदेश देने के लिए उनके महल में गए। गुरु जी का आगमन सुनते ही श्री राम ने द्वार पर आकर गुरु वशिष्ठ के चरणों में मस्तक नवाया, आदर पूर्वक अर्घ देकर उन्हें भवन में लाए, विधि पूर्वक पूजा करके उनका सम्मान किया, फिर सीता सहित उनके चरणों का स्पर्श करके बोले,
1: सेवक सदन स्वामी आगमनु मंगल मूल अमंगल तमनु। नाथ, उचित तो यह था कि प्रेम पूर्वक इस दास को ही बुला भेजते। नीति भी यही कहती है, किंतु आपने बड़प्पन त्याग स्वयं यहां पधारकर मुझे जो स्नेह दिया उससे आज ये घर पवित्र हो गया। आयुषु होई सो करों गोसाई सेवक लहे स्वामी सेवकाई।
2: भला राम ऐसा क्यों न कहेंगे, आप सूर्यवंश के भूषण जो हैं। रामभद्र, भूप सजेऊ अभिषेक समाजू चाहत देन तुम्हें जुवराजू। राम करहु सब संयम आजू जौं विधि कुशल निबाही काजू।
1: जैसी गुरुदेव की आज्ञा, मैं आपके आशीर्वाद का अभिलाषी हूं। गुरुदेव ये क्या कहकर चले गए, हम सब भाई एक ही साथ जन्मे, खाना सोना लड़कपन के खेल कूद कंछेदन यज्ञोपवीत और विवाह आदि उत्सव सब साथ साथ ही हुआ, लेकिन इस निर्मल वंश में यही एक अनुचित बात हो रही है कि और सब भाइयों को छोड़कर राज्याभिषेक एक बड़े का ही हो।

0: इधर तो नरनारी राज्याभिषेक के मुहूर्त की प्रतीक्षा करने लगे। उधर बिघन मना वहीं देव को चाली, क्योंकि तिनहि सुहाइन अबध बधावा, चोरहि चांदिनि रात न भावा। सरस्वती को बुलाकर देवताओं ने विनय की, हे माता, हमारी बड़ी विपत्ति को देखकर आप ऐसा कुछ कीजिए जिससे राम राज्य को त्याग कर वन को जाएं और देवताओं का कार्य सिद्ध हो। देवताओं की बात सुनकर सरस्वती पछताने लगी, किंतु देवताओं की बार बार विनय सुनकर उनकी बुद्धि पर पश्चाताप करती वे वहां से चल दी। ऊंच निवास नीच कर तूती, देख न सकहीं पराई विभूति। किसी प्रकार वे अयोध्या आई और नाम मंथरा मंदमति चेरी के कई केरी, अजस पिटारी ताही कर गई गिरा मति फेरी। सरस्वती देवलोक को वापस चली गई। तदनंतर मंथरा नगर की सजावट देखकर लोगों से उत्साह का कारण पूछती हुई श्री राम के राज तिलक की बात सुनकर हृदय में जल उठी। वो बुद्धिहीन दासी विचार करने लगी कि किस प्रकार ये काम रात ही रात में बिगड़ सकता है। जैसे कोई कुटिल भीलनी शहद का छत्ता लगा देखकर घात लगाती है, वैसे ही श्री राम के राज्याभिषेक के पुण्य कार्य को बिगाड़ने की चालें सोचती हुई मंथरा भरत मां तो पह गई बिलखानी।
1: अरे मंथरा, तू उदास क्यों है? गालू बड़ तोरे, दीन लखन सिख असमन मोरे। अरे कहते क्यों नहीं, राम राजा लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न कुशल से तो हैं।
2: कत सिख दे हमई को माई, गालू करब के ही कर बलु पाई। राम ही छाड़ कुशल के ही आजू, जही जनेसु दे चुभ राजू। कौशल्या के तो विधाता बहुत ही अनुकूल हुए हैं, इसीलिए वे कर्म में फूली नहीं समाती। मुझसे क्या पूछती हो, देखहु कसना जाई सब शोभा, जो अवलो की मोर मनु छोभा। पूत विदेश न सोच तुम्हारे, जानती हो बस ना हो हमारे। रानी तुम्हें तो तोषक तकियों से सजे पलंग पर पड़े पड़े नींद लेना ही बहुत प्यारा लगता है, राजा की कपट चतुराई तुम्हें दिखाई नहीं देती।
1: बस बस चुप रह, पुनिया से कब हूँ कहा से घर फोरी, तब धर जीभ कढ़ावा तोरी।
2: हमें क्या, हम तो तुम्हारी भलाई के लिए कहते हैं।
1: प्रिय वादिनी, सिख दीना हूं तो ही, सपने हूं तो पर कोपु न मोही। सुंदर मंगलदायक शुभ दिन वही होगा जिस दिन राम का राज्य तिलक होगा। सूर्यवंश की तो ये रीति है कि बड़ा भाई स्वामी और छोटा भाई सेवक बने। राम तिलक को जो साचो हूं काली, देऊ मांगू मन भावत आली। राम को सहज स्वभाव से कौशल्या के समान ही सब माताएं प्यारी हैं। मो पर गरह ही स्नेह बिसेखी, मैं करी प्रीति परीक्षा देखी। अगर विधाता कृपा करके मुझे दोबारा मानव देह दें तो ये भी दें कि राम पुत्र और सीता वधु हूं। राम मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं। उनके राजतिलक की बात सुनकर तुझे क्षोभ कैसा? तुझे भरत की सौगंध है, छल कपट छोड़कर सच सच बता कि क्या बात है, हर्ष के समय विषाद करने का क्या कारण है?
2: एक ही बार आस सब पूछी, अब कुछ कहब जीव करी दूजी। फोर जोग कपारू अभागा, भले हु कहत दुख रव रही लागा। अरे माई तुम्हें तो वो ही प्यारे लगते हैं जो झूठी सच्ची बातें बनाकर कहते हैं, मैं तो तुम्हें कड़वी लगती हूँ। हम हूँ कही बाब ठकुर सुहाती, नहीं तो मौन रहू दिन राती। विधाता ने कुरू बनाकर मुझे परवश कर दिया, दूसरे को क्या दोष देना, जो बोया सो काटती हूँ, दिया सो पाती हूँ। कौन पुहो हम ही कहानी, चेर छाड़ अब होब की रानी। जा रही

0: रोग स्वभाव हमारा, अनबल देख न जाई तुम्हारा। इसीलिए कुछ बात चलाई थी, छमही देव बड़े चूक हमारी।
1: अरे तू बुरा मान गई, तू तो मेरे हित की ही कहती है, बता तो भला क्या बात है।
0: तुम पूछो मैं कहत डरा हूं, थरे हूं मोर घर फोरी ना हूं। पर चलो मैं तो आपको अपना सब कुछ मानती हूं, इसीलिए कहती हूं। रानी तुमने जो कहा है कि तुम्हें सीता और राम प्यारे हैं और राम को तुम प्यारी हो, सो ठीक ही है, लेकिन रहा प्रथम अब ते दिन बीते, समऊ फिरे रिपु होई प्रीते। देखो सूरज कमल के कुल का पालन करने वाला है, पर बिना जल के वही सूरज कमल को चलाकर भस्म कर देता है।
1: अरे तू कहना क्या चाहती है मंथरा, साफ साफ कह।
0: सौत कौशल्या तुम्हारी जड़ उखाड़ना चाहती है,
1: क्या
0: उपाय की पाड़ लगाकर उसकी रक्षा करो। तुम्हें ही न सोच सुहाग बल, निज फस जान न हुराओ। लेकिन रानी मन मलीन मुंह मीठ नृप, राउर सरल स्वभाव।
1: मंथरा
0: राम की माता बड़ी चतुर और गंभीर है, उसकी थाक कोई नहीं पा सकता। उसने मौका पाकर अपनी बात बना ली, राजा ने भरत को जो ननियाल भेज दिया उसमें आप बस राम की माता की ही सलाह समझिए। कौशल्या समझती है कि और सब सौतें तो मेरी अच्छी सेवा करती हैं, एक भरत की माँ ही ऐसी है जो पति के बल पर गर्व करती है। इसीलिए माई कौशल्या को तुम बहुत ही चुभ रही हो, वो कपट करने में बड़ी चतुर है, इसीलिए उसके हृदय का भाव आसानी से जाना नहीं जाता।
1: लेकिन राजा,
0: हाँ राजा ही तुम पर प्रेम अभिषेकी, सबती स्वभाव सकई नहीं देखी, इसीलिए उसने जाल रचकर राजा को अपने वश में करके भरत के यहां ना होने पर राम के राज तिलक के लिए लगन पक्का करा लिया।
1: लेकिन राम का राज तिलक हो,
0: राम का राज तिलक हो, ये तो रघुकुल के अनुकूल ही है, ये बात सबको सुहाती है और मुझे तो बहुत ही अच्छी लगती है। लेकिन मुझे तो आगे की बात विचार कर डर लगता है।
1: आगे की क्या बात मंथरा?
0: भगवान करे उसका उल्टा फल कौशल्या को ही मिले।
1: मंथरा तुझे मेरी सौगंध, तू कुछ छिपा मत, सब सच सच बता, तुझसे बढ़कर मेरा हितकारी भला और कौन हो सकता है?
0: कहा पूछो, तुम अब हो ना जाना, निज हित अनहित पशु पहचाना। पूरा पखवाड़ा बीत गया नगर को सजते और तुमने खबर पाई है आज, वो भी मुझसे। मैं तुम्हारे राज में खाती पहनती हूं, इसलिए सच कहने में मुझे कोई दोष नहीं है। अगर मैं अपनी ओर से बना के झूठ कहती हूँ तो भगवान मुझे दंड देगा।
1: नहीं मंथरा, मैं तुझ पर भरोसा रखती हूँ, तू झूठ क्यों कहने लगी?
0: अगर कल राम को राज तिलक हो गया तो समझ रखना कि तुम्हारे लिए विधाता ने विपत्ति का बीज बो दिया। मेरी बात को पत्थर की लकीर समझना, रेख खचाई कहूं भल भाखी, भामनी भई हूँ दूध कई माखी। अगर अपने बेटे भरत सहित कौशल्या की चाकरी बजाओगी तो घर में रह सकोगी, अन्यथा नहीं। कत्रु ने विनता को दुख दिया था, तुम्हें कौशल्या देगी, भरत जेल की हवा खाएंगे और लक्ष्मण राम के नायब होंगे।
1: मंथरा
0: रानी धीरज धरिए, घबराने से काम नहीं चलेगा, साहस के साथ कोई उपाय सोचिए।
1: मंथरा तू ठीक कहती है, दाहिनी आंख नित भर गई मोरी, मैं रोज रात को बुरे सपने देखती हूँ, लेकिन अपने अज्ञान के कारण तुझसे कहती नहीं। काह करो सखी सूत सुभाओ, दाहिन बाम न जानो काओ, जहां तक मेरा वश चला मैंने आज तक कभी किसी का बुरा नहीं किया, न जाने दैव ने मुझे एक साथ ही यह कठिन दुख किस पाप के बदले दिया।
2: नई हर जन्म भरब बरु जाई, जियत न करबी सवति सेवकाई।
1: शत्रु के वश में रहकर जीने से मर जाना अच्छा है।
0: रानी, अस कस कहू माने मनू ना, सुख सुहाग तुम कहू दिन दूना। पर कह देती हूँ, जे ही राउर अति अनभलता का, सोई पाइए यहू फलु परिपाका।
1: स्वामिनी, मैंने जब से ये कुमत सुना है, तब से मुझे न दिन में चैन है, न रात को, न भूख लगती है, न नींद ही आती है।
0: मंथरा, तब तुम चिंता मत करो रानी, मैंने ज्योतियों से पूछा था, उन्होंने रेखाएं खींचकर हिसाब लगाकर कहा, भरत भुआल हुई ये साची।
1: सच
0: रानी, अगर तुम कहो तो मैं एक उपाय बताऊं। राजा तुम्हारी सेवा के वश में तो हैं।
1: परम कूप तो वचन पर सकूं पूत पति त्याग। जब तू मेरा ये महान कष्ट देखकर कह रही है, तो भला मैं अपने हित के लिए उसे क्यों न करूंगी। तू कह तो सकी।
0: स्वामिनी, सुद अही है कि नहीं? तुमने मुझसे एक कथा कही थी, उसके अनुसार दुई वरदान भूप संथाती, मांगहु आज चुड़ा पहुंचाती। पुत्र को राज और राम को बनवास दो, और सौत का सारा आनंद तुम ले लो।
1: सखी मंत्रा,
0: एक बात का ध्यान रखना, जल्दी मत करना। भूपति राम सपत जब करी, तब मांगहु जेही बचन न डरे। आज की रात बीत गई तो काम बिगड़ जाएगा। मेरा कहा मानो, सीधे गोप भवन में जाओ। सब काम बड़ी सावधानी से बनाना, सहसा ही राजा की बातों में मत आ जाना।
1: सखी, तू मुझे बहुत प्रिय है, प्राणों से भी प्रिय। तू बहुत ही बुद्धिमान है, संसार में मेरा तेरे समान हितकारी दूसरा नहीं है। तू मुझ बही जाती हुई के लिए सहारा हुई है। जो विधि पुरब मनोरथ काली, करो तो ही चख पूतरी आली।
3: इस प्रकार दासी को अनेक प्रकार का आदर सम्मान देकर कोप भवन गवनी कह के श्रोताओं,

अंत तो गत्वा सांझ समय सानंद नृप गयउ केकई गेह। लेकिन कोप भवन सुनि सकुचे उराऊ, डर के मारे राजा के पैर आगे नहीं उठते। कैसी विडंबना है, स्वयं देवराज इंद्र जिनकी भुजाओं के बल पर राक्षसों से निर्भय होकर निवास करता है, और संपूर्ण राजा लोग जिनका रुख देखते रहते हैं, वही राजा दशरथ स्त्री का क्रोध सुनकर सूख गए। सभय नरेश प्रिया पहिं गयउ, देखि दशा दुख दारुण भयउ। राजा ने देखा।

कैकेयी जमीन पर पड़ी है पुराना मोटा कपड़ा पहने हुए, शरीर के सभी आभूषण उतार कर फेंक दिए हैं। श्रोताओं, उस दुर्बुद्ध कैकेयी को यह कुवेश कैसा लग रहा था, मानो भावी विधवापन की सूचना दे रहा हो। किसी प्रकार राजा कैकेयी के

0: इसलिए देवता भी अगर तुम्हारा शत्रु होगा तो मैं उसे भी मार सकता हूँ। कीड़े मकौड़ों के समान वे सारे नरनारी तो चीज ही क्या है। सुंदरी, तुम तो मेरा स्वभाव जानती हो, मेरा मन तो सदा तुम्हारे मुखचंद्र का चकोर है। प्रिय, मेरी भुजा, कुटुंबी, सर्वस्व, पुत्र, यहां तक कि मेरे प्राण भी, ये सब तुम्हारे अधीन है। मैं सच कहता हूं, मुझे राम की सौगंध है, मैं तुमसे कुछ भी कपट करके नहीं कह रहा। तुम हंसो और प्रसन्नता के साथ मन चाहा मांग लो, अपने मनोहर अंगों को आभूषणों से सजाओ। प्रिय, अवसर को अवसर तो मन में विचारो। भामिनी, भयउ तोर मन भावा, घर घर नगर आनंद बधावा। मैं कल ही राम को युवराज पद दे रहा हूं, सुनैने तुम मंगल साज सजा लो।
1: मांग मांग पै कहो पिए, कबहु न देहु न लेहु। आपने दो वरदान देने को कहा था, मुझे तो उनके मिलने में भी संदेह है।
0: अब मैं तुम्हारा मर्म समझा। मान करना तुम्हें परम प्रिय है ना? तुमने उन वरों को धरोहर के रूप में रखकर फिर कभी मांगा ही नहीं। मेरा भूल जाने का स्वभाव तुम जानती ही हो, मुझे भी याद नहीं रहा। अब तुम झूठे हो, हम ही दोष जनि देहु, दुई के चार मांगी मकुलेहु। तुम जानती ही हो, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाहु पर वचन न जाई। और नहीं असत्य सम पातक पुंजा, गिरी सम हो ही कि कोटिक गुंजा। प्रिय, एक तो सत्य स्वयं ही सारे उत्तम पुण्यों का मूल है, उस पर मेरे मुंह से राम की शपथ निकल पड़ी है।
1: तो सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, देहु एक बर भरत ही टीका।
0: अच्छा
1: नाथ, दूसरा वर मैं हाथ जोड़ कर मांगती हूँ, मेरा मनोरथ पूरा कीजिए। तापस वेश विशेष उदासी, चौदह बरिस राम बनवासी।
0: मोर मनोरथ सुंदर फूला, भरत करिनी जिमि हाथे समूल। अब सुझार तीन सी अचल विपत्ति कह नहीं। आह, क्या होने को था और क्या हो गया।
1: भरत को राउर पूत न हो ही, आने हूँ मोल बिसाही की मोही। क्या मैं आपकी विवाहिता नहीं हूँ जो मेरी बातें आपको बाण की तरह लगी। अगर आपको ऐसा ही करना था तो पहले ही सोच समझ कर बात करते। उत्तर दीजिए, हाँ कीजिए, नहीं तो ना ही कर दीजिए। आप रघुकुल में सत्य प्रतिज्ञा नाम से प्रसिद्ध हैं। आपने ही वर देने को कहा था, अब भले ही ना दीजिए, सत्य को छोड़ दीजिए और जगत में अपयश लीजिए। सत्य सराही कहे वरु देना, जाने हूँ ले ही मांगी चबेना। राजा शिवी, दधीची और बलि ने जो कुछ कहा, शरीर और धन त्याग कर भी उन्होंने अपने वचन को निभाया।
0: इससे कैसी कठोर परिस्थिति पैदा कर दी कि उससे बच निकलना ही मेरे लिए कठिन हो गया। क्या सचमुच ही ये मेरे प्राण लेकर रहेगी? ये विश्वास और प्रेम को नष्ट करके ऐसे बुरे वचन कैसे कह रही हो? मोरे भरत राम दुई आखी, सत्य कहूं करी संग करू साथी। मैं सवेरा होते ही दूत भेजूंगा, भरत और शत्रुघ्न दोनों भाई सुनते ही तुरंत आ जाएंगे। शुभ मुहूर्त निकाल कर सब तैयारी करके घोषणा पूर्वक मैं भरत को राज्य दे दूंगा। राम को राज्य का लोभ

0: नहीं, भरत को तो वे बहुत प्रेम करते हैं। मैं ही अपने मन में बड़े छोटे का विचार करके राजनीति का पालन कर रहा था, इसलिए बड़े को राजतिलक देने जा रहा था। राम सपत सत कहु सुभाव, राम मातु कछु कहे न काऊ। मैं सब कीनी तो ही बिन पूछे, ते ही ते परे हो मनोरथ छूछे। प्रिय अब क्रोध छोड़ दो और मंगल साज सजा लो, कुछ ही दिनों बाद भरत युवराज हो जाएंगे। एक ही बात का मुझे दुख है कि तुमने दूसरा वरदान असमंजस भरा मांगा है। रिस परिहास इस साचे हु साचा, क्रोध को त्याग कर राम का अपराध बताओ। हर कोई तो कहता है कि राम बड़े साधु हैं, तुम स्वयं भी राम की सराहना किया करती थी और उन पर प्रेम भी रखती थी। अब तुम्हारी ये बात सुनकर मुझे संदेह हो गया है कि तुम्हारी प्रशंसा और स्नेह कहीं झूठे तो नहीं थे। भला जिसका स्वभाव शत्रु के भी अनुकूल है, वो माता के प्रतिकूल आचरण कैसे करेगा। प्रिय हंसो और क्रोध छोड़कर उचित अनुचित का विचार करके वर मांगो, जिससे अब मैं नेत्र भरकर भरत का राज्याभिषेक देख सकूं। जिए मीन बरुबारी बिहीना, मनि बिनु फनिक जिए दुख दीना। कहूं सुभाव न छलु मन माही, जीवन मोर राम बिनु नाही। समझी देख जिए प्रिया प्रवीणा, जीवन राम दरस आहीना।
1: आप करोड़ों उपाय क्यों न करें, यहाँ आपकी माया नहीं चलेगी। या तो मैंने जो मांगा है वो दीजिए, नहीं तो ना ही करके अपयश लीजिए। मोहिना बहुत प्रपंच सुहाही, राम साधु तुम साधु सयाने, राम मात भली सब पहचाने। कौसल्या ने जैसा भी भला चाहा है, मैं भी उसे वैसा ही फल दूंगी, वो भी जीवन भर याद रखेगी। होत प्रात मुनि वेश धरी, जो न राम बन जाहि, मोर मरण राउर अजस नृप समझिए मन मार।
0: हा राम, हा राम, हा राम।

0: क्रोध की नदी की तरह उफनती हुई कैकेयी को देखकर राजा दशरथ ने समझ लिया कि बात सच्ची है और अब तियमिस मींच उसीस पर नाची। अंततो गत्वा राजा ने कैकेयी के चरण पकड़कर उससे कहा,
1: जनी दिन कर कुल हो सी कुठारी, मांगू मात अब ही देव तो ही, राम विरह जनि मार असी मोही, राखु राम कहूं जही तही भाथी, नाही ते जरही जन्म भरी छाती।
2: अगर अंत में आपको ऐसा ही करना था तो मांग मांग तुम के ही बल कहू, दुई की होई एक समय फुआला, हसब ठठाई फुलाऊ बगाला, दानी भी कहाना

0: कंजूसी भी करना। क्या ये संभव है कि लड़ाई में बहादुरी भी दिखाएं और कहीं चोट भी न लगे? अब या तो अपने वचन छोड़ दीजिए या फिर धीरज रखिए। इस प्रकार असहाय स्त्री की भांति रोइए पीटिए नहीं।
1: तू जो चाहे कह, तेरा कुछ भी दोष नहीं है। मेरा काल तुझे पिशाच होकर लगा, वही तुझसे ये सब कहला रहा है। भरत तो भूल कर भी राजपद नहीं चाहता। तेरी कुबुद्धि में होनहार बसी है। ये सब मेरे पापों का ही फल है कि कुसमय में विधाता विपरीत हो गया। मगर याद रखना, ये अयोध्या जिसे तू आज उजाड़ रही है फिर फली प्रकार बसेगी। समस्त गुणों के धाम राम की प्रभुता भी होगी। सब भाई उनकी सेवा करेंगे और तीनों लोकों में राम की बढ़ाई होगी। केवल केवल तेरा कलंक और मेरा पछतावा मरने पर भी नहीं मिटेगा, किसी भी तरह नहीं जाएगा। अब तो ही नीक लाग करूं सोई, लोचनोट बैठूं मुखोई। मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूं, जब तक मैं जीवित हूं तब तक मुझसे कुछ न कहना। अरिया भागनी, अंत में तू पछताएगी कि जो तू तांत के लिए गाय को मार रही है। भगवान करे सवेरा ही ना हो, ये रात इसी तरह बनी रहे। भगवान सबको ऐसी सुबुद्धि दे कि कोई भी राम से इस बात की चर्चा न करे। हे रघुकुल के गुरु सूर्य भगवान, आप उदित न हो। अयोध्या को व्याकुल देखकर आपके हृदय में बड़ी पीड़ा होगी।

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

सरयू नदी के तट पर बसी सुंदर अवधपुरी रामलला की जन्मभूमि। दशरथ नंदन राम जी ने इसी नगरी में अपनी मानव सुलभ बाल लीलाएं की। श्री राम दशानन पर विजय प्राप्त कर जब अयोध्या नगरी पुनः पधारे तो ये जानकर अयोध्या वासियों के आनंद की सीमा न रही कि तारनहार श्री राम अब सदा के लिए यही निवास करेंगे। भक्त जनों और संत जनों की प्रार्थनाओं से रामलला के सर से हर प्रकार की अलाबला टल गई।

एक सच्चा हरि भक्त जीवन भर ईश्वर दर्शन की आस लिए, हरि मिलन की प्यास लिए, पल पल तड़पता है, तरसता है कि उस

भी हरि कृपा करते हैं। भक्तों का तारनहार, जगत का पालनहार हर युग में अवतार लेता है, कभी अवधपति राम तो कभी गोकुल का श्याम बनकर। बाल कृष्ण की एक झलक पाने के लिए तुलसी, नानक, सूरदास, मीराबाई, एकनाथ, तुकाराम और नरसिंह मेहता ने आराधना की, तपस्या की और वो सफल हुए। हरि दर्शन का प्यासा भक्त ईश्वर से कई सवाल करता है कि उसमें क्या कमी है, उसकी भक्ति में क्या कसर है कि परमात्मा उससे इतनी दूरी बनाए रखता है।